0: की सर पर रखे,
1: अपने से अपने दास को दे वडाई,
0: अपने सेवक को नाम जपाई,
1: अपने सेव की आपत रखा,
0: ताकि गत में तो कोई न लाखे,
1: सबके सेवक ऊको को ना पहुँचा,
0: सबके सेवक ऊँचते ऊँचे,
1: जो अपनी सेवा लाया,
0: नानक सो सेवक दे दिस लगाया,
1: इसकी कीरी में कल रखे,
0: पसंद करे लश्कर कोट लाखे,
1: इसका शासन काटत आप,
0: ताको राखत दे कर हाथ,
1: मानस जतन करत भोपात,
0: इसके कर्तव्य बैठे जात,
1: मारे न रखे अव न कोई,
0: सर्व जिया का राखा सोए,
1: काहे सोच करे रे प्राणी,
0: जब नानक प्रकल विडानी,
1: बारम बार वा प्रभ जपिए,
0: ई अमृते अमन तंत्र पिए,
1: नाम रतन जिन गुर मुख पाया,
0: इसके शवर नहीं दृष्ट आया,
1: नाम तन नामो रूप रंग,
0: नामो सुखर नाम का संग,
1: नाम रस जो जन तृप्ता,

0: कैसे जन त्रिवताने
1: पूरन पुरख नहीं डोलाने
0: पर परे प्रेम रस रंग
1: जे चाहो साध के संग
0: परेशान आन सब त्याग
1: अंतर प्रकाश दिन लिव लाग
0: भागी जपया।

0: कार्य का संदेश देता
1: पाप उन तब कहते होता
0: तारी अपना सुन समात
1: तब बैर विरोध के संग कमात
0: का वर्ण चिन्ह न जापत
1: हरक शोको किसे व्यापत
0: अपना पार ब्रह्म
1: तब मोहा के सोवत परम
0: अपने खेल आप वृतीजा
1: नान करने हार न दूजा
0: जब होवत प्रभ केवल तनी
1: बंद मुकत को किस को गनी
0: जब एक हर गम्य पार
1: तब नरक सुरा को

0: मृगम अपार
1: अविनाशी सुखी अपने आसन
0: तै जनम मरण को काम विनाशन
1: पूर्ण करता प्रभु सोए
0: तब जम की द्रातों के सोए
1: जब विगत गोचर प्रभु एका
0: तब चितर उपते पूछत लेखा
1: नाथ निरंजन गोचर गादे
0: तब कौन छुटे कौन बंधन बादे
1: अपने आप ही अचरजा
0: नानक आपन रूप आप ही प्रजा
1: निर्मल पुरुख पुरुख पात होता।

0: कौन कथे कौन सुने हारा
1: उचते
0: ऊंचा
1: कार पई कहावत माया जंजाल सुख मान अपमान
0: अनेक प्रकार के
1: लाभ कर देख
0: संकोचे तो नानक
1: भगत तह आप
0: जय श्री कृष्ण।

0: जगतमन होव सुख
1: तदाई मिट अहंकार
0: तिजन को कोई न पहुंचन हार
1: तिरुपुर ठंडा गुरु सूरा
0: नानक ताके कारज भरा
1: बात पूरी अमृत जाके दृष्ट
0: दर्शन पेख दूर श्रेष्ठ
1: चरण कमल जाके अनूप
0: सकल दर्शन सुंदर हर रूप
1: सेवा सेवक परवान
0: अंतर जामे पुरक प्रदान।

प्रसन्न पहे गुरुदेव काल जंजाल विकार तिरते कर प्रसाद प्रवतारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सुखमणि सहज गोबिंद गुण नाम सर्वशा ताकि पूर्ण होए।

रहौ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी तरिया। सिर सिर जिक संभाहे ठाकुर, काहे मन भव करया। उडे उडे आवै सै कोसा, उंत पाछै बचरे छरिया।

पूजा की एक बार चौपाई को कह चौपाई सम्मत 17 सहस पण जाए अर्ध सहस फुन 3 कहि जाए भाद्रव सुदी अष्टमी रब बारा तीर सुतद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र पखियाने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे 405 चरित्र समाप्त मस्त शुभ मस्त आप जूं दोहरा।

जाओ भाई, अमरी करो हादर छा पूर्ण हो चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबत मुकाबो आप हाद मोह बचाबो, सुखी बस मोर परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दैन करियै, सब बैरन को आज संगरियै, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुमह छाड़ कोई अवना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारी तारिय है, चौन चौन सत्र हमारी मारिय है। आप हादा मुझे अबरियाई, मरण काल का त्रासन मरियाए, हो जो सदा हमारी पच्छा, श्री अस तो जो कर हो रच्छा। राख लेहु मह रखन हारी, साहिब सन साहिब प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चातर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बबतरा, काल पाए शिव जु अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमासा।

भेद भेद और आलम निरंकार निर्विकार निर्लंबो आदि अनिला नादो संभव ताका मूडो चार्द भेदा जाको भेव न पावद वेदा ताको कार पाहन अनुमान तो महा मूड कत भेद न जानत महादेव को कहत सदा सिव निरंकार का चिन्हत न भेव आप अपनी बोध जीती बरणत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखाना जाय पसारा कहे बिद सजा प्रथम संसारा एक रूपा नूप सरूपा रंग भयो राम कहे भूपा अंड जज रज से तज कीनी ओत कुछ खान बहुर दीनी कहो पुर राजा हो बैठा कहो सिमट भय शंकर कैठा सिगरी सिरट दिखाई अचंपव आदि जगात स्वरूप सजंपव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बारो सिख संघरो दोठ जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जी अस्तो जो तब सरणी परे तिनके दोठ दुख तुह मरे पुरख जन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे।

सबको सत समावर कर भरपूर। राम नाम देवा मैं सुर नाल प्रचत जाय, नानक तो मुकुंत पाए। जुज में जोर छली चंद्रा उलकान, कृष्ण जादम पया पार। जात को पीला आया बिंद्रा बन मरण किया। कल में वेदा तरबन हुआ, नाव कुदा यलो पया। नील बस

मत सुमत तेरा वस स्वामी हम जंत तू पुरख जंतनी जन नानक के प्रभ करते स्वामी।